0: व्यावसायिक शिक्षण, स्वकमाईचं साधन।
1: तेरणा ITI धाराशिव येथे 10वी पास नापासांना वेल्डर, कोपार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिक, इलेक्ट्रिशियन आणि वायरमन या अभ्यासक्रमांना ऑनलाईन प्रवेश सुरू।
0: आता यश तुमचं। संपर्क प्राचार्य, तेरणा ITI, MIDC परिसर, धाराशिव। मोबाईल 82-75-92-59-00।
2: तुम्हाला माहित आहे का, केंद्र सरकारने लहान उद्योजकांसाठी 40 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे तारण मुक्त मुद्रा कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे। ही रक्कम कुवेत सारख्या देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 3 पट इतकी आहे।
3: करोडो छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जन कल्याणाची।
0: प्रवेशासह करिअरची सुवर्ण संधी। तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित तेरणा कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय धाराशिव इथे
1: 12वी पास ना BCA, 12वी सायन्स पास ना BSc कॉम्प्युटर सायन्स, BSc जनरल तसेच BCom BA, MSc कॉम्प्युटर सायन्स, 11वी आर्ट व कॉमर्स शाखेत प्रवेश देणे सुरू।
0: विद्यापीठातील पहिले संगणक शास्त्र महाविद्यालय, ब्रॉडबँड इंटरनेट सह सुसज्ज 3 कॉम्प्युटर लॅब, VC द्वारे गेस्ट लेक्चर सुविधा, उच्च विद्याविभूषित प्राध्यापक वृंद,
1: शासनाच्या करिअर कट्टा उपक्रमाद्वारे मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सुविधा, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासन नियमानुसार शिष्यवृत्ती।
0: संपर्क प्राचार्य डॉक्टर DB मोरे सर, तेरणा महाविद्यालय, MIDC परिसर, धाराशिव। मोबाईल 94-22-92-96-78, 94-21-358-408 आणि 94-21-36-10-71।
4: नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। मित्रांनो, रेडिओ तेरणाच्या माध्यमातून आपण अशा व्यक्तिमत्वांची भेट घेत असतो किंवा अशा व्यक्तिमत्वांच्या माध्यमातून आपल्याला प्रेरणा मिळत असते की ज्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये एक वेगळं ध्येय धोरण ठरवलेलं असतं आणि त्याप्रमाणे ते मार्गक्रमण करत असताना आयुष्यामध्ये अनेक अनुभव आलेले असतात आणि त्या अनुभवाचं शेअरिंग करत असताना निश्चितच आपल्याला मन एक प्रेरणा मिळत असते, इन्स्पिरेशन मिळत असते। अगदी त्याच पद्धतीनं आज आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेला आहे पारुल खुराना मॅडम यांना। त्या मूळतः दिल्लीच्या राहणाऱ्या आहेत आणि सध्या त्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना, युवकांना खूप चांगल्या पद्धतीनं प्रेरित करतात। आजच्या या मोबाईलच्या, इंटरनेटच्या, सोशल मीडियाच्या जगामध्ये आपलं ध्येयधोरण कसं असायला पाहिजे, आपण आपल्या करिअरमध्ये कशा पद्धतीनं पुढे जायला हवं आणि आपल्या ज्या फॅमिली प्रायोरिटीज असतात, आपलं जे कौटुंबिक जीवन असतं ते पण कशा पद्धतीनं निर्भय असायला पाहिजे आणि चांगलं असायला पाहिजे याविषयी ते मार्गदर्शन करत असतात आणि त्यांचा असा हा 5-6 दिवसाचा कोर्स सुरू असतो। आजही त्या उस्मानाबादमध्ये आहेत आणि उस्मानाबादमध्ये अशाच पद्धतीचा त्या कोर्स घेत आहेत। आज आपण त्यांच्या जीवनाविषयी आणि त्या एकूणच कशा पद्धतीनं लाईफ स्किल शिकवतात याविषयी आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। पारुल खुराना मॅडम जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा में।
5: नमस्ते।
4: जैसे कि पारुल जी, मैंने अभी आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि आप मेनली दिल्ली से हो और यहाँ पे आप कुछ युवकों को, जो कॉलेज के स्टूडेंट है, उनको एक आप गाइडेंस का प्रोग्राम यहाँ पे कर रही हो, तो वो क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रही हो अभी?
5: तो मैं कई सालों से कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हूँ आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से। बहुत सारे यंगस्टर्स, यूथ बेस्ड प्रोग्राम्स मैंने लिए हैं जिसमें हम ये यंगस्टर्स को एक ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, एक ऐसा प्रोग्राम के माध्यम से उनको जीवन में एक बैलेंस बनाना सिखाते हैं कि आप अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसमें आगे बढ़ते चलें और उसमें बढ़ते हुए आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको डील कैसे करना है।
4: जी जी।
5: तो यदि हम दिन का कुछ भाग इन्वेस्ट करते हैं ध्यान करने में, प्राणायाम करने में, ध्यान की गहराई में जाने में, तो आप ये देखेंगे कि आप जो भी करते हैं उसकी तरफ आपकी गति भी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ज्यादा तेज होगी, आपका जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ आपके कदम तेजी से बढ़ने लगेंगे और आप जीवन में कुछ बड़ा करेंगे।
4: जी,
5: ना
4: जी।
5: हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं है मेरी जो स्किल्स हैं वो आपकी स्किल्स हों। तो इसी तरह एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक और उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए ये मार्गदर्शन यदि कोई कर दे, कोई गाइडेंस हमको सही दे दे, तो हमारा आगे चलना बड़ा आसान हो जाता है। सो इट इज माई पैशन टू बी एसोसिएटेड विद कॉलेज स्टूडेंट्स यंगस्टर्स एंड गाइड देम थ्रू देयर चैलेंजेस एंड दे लिव अ बेटर लाइफ.
4: जी जी, जैसे कि पारुल जी अभी आपने कहा कि एक तो आपने बहुत सारी एक छोटी सी इस बात में आपने कह दिया कि आजकल के यंग जनरेशन किस तरीके से जीना चाहिए, उसके हिसाब से आप उनको गाइडेंस करती है ध्यान प्राणायाम के हिसाब से, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति है और जिसको पूरे दुनिया ने भी माना हुआ है. तो लेकिन हम अगर आपके तरफ देखना चाहे, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे, तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा भी था कि आपका इंजीनियरिंग भी हो चुका है, साथ में आपने इंजीनियरिंग में मास्टर भी किया हुआ है और आपने मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया हुआ है, तो थोड़ी सी आपके लाइफ की जर्नी के बारे में भी हमारे सब श्रोताओं को आप कुछ बताना चाहेंगी तो.
5: जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. जब मैं 6 महीने की थी तो मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था. और वो एक्सीडेंट जब ऑपरेट किया गया तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ.
4: जी.
5: तो मेरे पिता 8 से 10 साल बेड पे थे. मेरी माँ ने मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण किया है फाइनेंशियली, इमोशनली, एजुकेशन वाइज. तो मैंने बचपन में ऐसा एनवायरनमेंट देखा जिससे हम जब बड़े हुए तो इमोशनली थोड़े से वल्नरेबल थे, थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा थे. किसी ने कुछ कह दिया तो मन पे लग गई. दोनों हम पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे रहे एकेडमिकली, वी हैव बीन वेरी ब्राइट. और लेकिन दुनिया को फेस करने के लिए जो लाइफ स्किल्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने आप को प्रूव करने का एक प्रेजेंटेशन चाहिए, अपने अंदर एक आत्मबल चाहिए, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानने की शक्ति चाहिए, वो शायद मेरे अंदर उतनी नहीं थी. जब मैं अपनी पहली जॉब कर रही थी इंजीनियरिंग में भी, मैं टॉप रैंकर्स में से हूँ अपने स्कूल की और कॉलेज की. और जब मैंने मास्टर्स करके पहली जॉब में थी तो मेरे ही एक मित्र ने मुझे बोला कि तुम ये प्रोग्राम करो, तुम्हारी लाइफ और अच्छी होगी. तो मैंने जब ये प्रोग्राम किया 2009 में, तो मैंने ये देखा कि अगले कुछ दिनों में मुझे एक एनर्जी का अनुभव हुआ. सुबह से रात तक मैं काम करती थी ऑफिस में, अच्छी थी काम करने में, और लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद मेरे अंदर एक एनर्जी बाकी थी. तो ऐसा नहीं था कि जैसे पहले मैं थक गई और हर दूसरे दिन मुझे एक हेडेक हो रहा है और मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस आता था कि डेडलाइन है, कंप्लीट करना है. यू नो, आप देखोगे जो टॉपर्स रहते हैं उनको अपने अंदर एक स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है कि नहीं यार मुझे अच्छा करना है एग्जाम. तो एक तरीका है हम लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेसफुली लेके आगे बढ़े, दूसरा तरीका है हम स्ट्रेस फ्री रहते हुए काम को करते जाएं. और मुझे ऐसा अब लगता है इतने सालों के ये प्रैक्टिस के बाद कि जो स्ट्रेस फ्री रहने वाला तरीका है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें यदि आपको फेलियर भी मिले तो आपको अंदर तक लगेगा नहीं, आप उस फेलियर से लर्निंग लेके आगे बढ़ जाओगे. तो वो जर्नी मेरी शुरू हुई इस प्रोग्राम के बाद. अगले 6 महीनों में मुझे 3 अप्रेजल्स हुए.
4: अच्छा.
5: जो बहुत ही मेरे लिए एक नई बात थी और शायद मेरी टीम के लिए भी नई बात थी कि एक फ्रेशर को उन्होंने इतना सम्मान दिया. इसके बाद बस लाइफ में आप समझिए कि ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ने के लिए मुझे एक मार्ग जैसे दिख गया था. जो भी मैं करना चाहती थी वो अचीव कर पाती थी, और यदि नहीं भी अचीव किया तो उससे एक सीखा और आगे बढ़ते चले गए. तो इस प्रोसेस में जैसे कभी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो घर पे झगड़ा हो गया, माता पिता से झड़प हो गई, या फिर अपने दोस्तों में अनबन हो गई, वो सब होना भी बहुत मिनिमम हो गया. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे झगड़े होने बंद हो गए, झगड़े होते हैं अभी भी होते हैं, लेकिन 10 मिनट 11वें मिनट नहीं रहता.
4: अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, उसको कैसे डील करना,
5: चीजों को देखने का नजरिया बदल गया. सामने वाले की सिचुएशन अलग हो सकती है ये जानने का गहराई बढ़ गई. और सिचुएशन को डील करना और उसको रिस्पोंड करने की एक अलग दूरदर्शिता आई मेरे अंदर, एक फोरसाइट आई कि ऐसा भी हो सकता है, चलो ऐसा करके देखते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी जो आजकल मैं देखती हूँ कि यंगस्टर्स में काफी मिसिंग है. मुझे चीजें ऐसी चाहिए, ऐसी ही चाहिए, नहीं मिलेंगी तो नहीं चलेगा. ये एटीट्यूड से यदि हम जीवन जिएंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर हमारे साथ जो रिश्ते चलेंगे वो रिश्ते टूटेंगे. आज मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे शादियों में भी प्रॉब्लम्स हैं, या तो शादियां हो नहीं रही या फिर करते हैं तो 1-2 साल के अंदर टूट जाती है. तो मैं लड़कियों को तो स्पेसिफिकली ये बोलती ही हूँ कि आप अपने घर की स्पाइनल कॉर्ड है। यदि एक घर की महिला आप मजबूत जड़ों की होगी तो वो घर में सब ठीक चलता है। ये मैंने अपनी माँ से अनुभव किया।
4: वाह क्या बात है।
5: तो वो उन्होंने जब ये सिचुएशन फेस किया, जब मेरे फादर 8 साल चल नहीं पाए, उनकी बीमारी पे खर्चा था, घर का खर्चा था, हमारी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जॉब भी करी और वो घर में भी हमको पूरा प्यार दिया। उनकी ट्रांसफरेबल जॉब रही है, वो केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रही हैं और असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुई हैं।
4: क्या बात।
5: तो वो उन्होंने ट्रांसफरेबल जॉब के साथ अप डाउन किया बीच में हमको देखने के लिए कि हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। इस बीच में फादर ने भी खूब सपोर्ट किया, लेकिन लीड रोल मेरी माँ ने लिया। तो ये मेरी इंस्पिरेशन भी रही है कि अपनी फैमिली को नज़रअंदाज करते हुए हम अपने करियर की ओर बढ़ेंगे। तो एक पार्ट, आधा पार्ट जीवन का पीछे छोड़ दिया हमने।
4: क्या बात।
5: तो वो दोनों चीजें बैलेंस करके आगे बढ़ना है और ये जिम्मेदारी मुझे ऐसे लगता है महिलाओं की ज्यादा है। गर्ल्स आर मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि एक बैलेंस का जो एक क्वालिटी है ना, वो एक लड़की में नेचुरली आती है। कि काम के बीच में बच्चे को संभालते हुए या शादी को संभालते हुए अपना करियर बना लेना, ये लड़की बहुत अच्छे से जानती है। नेचर से शायद गिफ्टेड है कि हम लोगों को ये एक सिक्स्थ सेंस भी होता है और बैलेंस का एक बड़ा नेचुरल तरीका भी होता है। आप देखिए, हमारे ही पुराने संस्कारों में ये है कि महिला पैसे बचाती थी और जहाँ जरूरत पड़ती थी वहां देती थी। तो वो उतनी सोच और उतनी संभालना, वो एक महिला का बड़ा नेचुरल वो है। और मैं ये जब महाराष्ट्र में मैंने बहुत साल काम किया है और जिस कारण मैं आज यहाँ आई हूँ, वो मेरा ही एक स्टूडेंट है।
4: नहीं नहीं, मैं उसी के ऊपर आना चाहता था पारुल जी, लेकिन जो आपने अभी तक कहा उसको थोड़ा सा मैं एक जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि जैसे मैं हमारे रेडियो तेरना से भी बहुत सारे हमने तेरना एल्युमिनी के इंटरव्यूज किए हैं, तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है जिनको हर एक कंपनी में जॉब चाहिए, एक जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उनका माइंड सेट उस तरीके से रहना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे की पॉइंट्स जो आपने अभी कहा है उसके अंदर से उनको मिल सकते हैं, ये तो बात है। साथ में दूसरी एक बात ऐसी है कि मैं आपको भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आउट ऑफ लिविंग का आपने कोर्स किया और आपके लाइफ में चेंजेस आ गए, तो उसी तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक है श्री श्री रविशंकर गुरु जी, वो खुद तुलजापुर में, यहाँ का तुलजापुर श्री क्षेत्र जो है वहाँ पे 2 फरवरी 2023 को आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ उनका महासत्संग होने वाला है। लोगों में उत्साह है गुरु जी के दर्शन करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये पूछना चाहता था आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू कि आपके लाइफ में चेंजेस हो गए बाद में, जैसा कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए बहुत काम भी किया, जैसे कि महाराष्ट्र में भी काम किया, देश में भी काम किया और अब्रॉड में भी काम किया, तो उसके बारे में थोड़ी सी क्या जानकारी देना चाहेंगी?
5: हाँ, तो जब मैंने अपने अंदर इतना चेंज देखा, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऐसे परिवार में ऐसी सिचुएशन आई, बाद में ये प्रोग्राम किया और उसकी प्रैक्टिसेस जब मैंने चालू की, मैंने देखा कुछ हफ्तों महीनों के अंदर ही मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी आने लगी, स्थिरता आने लगी। चीजें मुझे जो हिलाया करती थी पहले, उतना अंदर हिलना बंद हो गया। और ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा ये ज्ञान तो हर किसी तक पहुंचना चाहिए और शायद मैं अपने बचे हुए वक्त में कुछ योगदान दे सकूं। तो उन दिनों वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया का मूवमेंट बहुत प्रचलित था और घर घर जाके हमने वोटर आईडी कार्ड्स बनवाने थे, तो उस मूवमेंट के अंतर्गत मेरा सेवा का कार्य शुरू हुआ। मुझे लगा मुझे मेरे देश के लिए कुछ करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। करते करते मुझे इसमें इतना मज़ा आने लगा और कॉलेज में जो यंगस्टर्स हैं, कई बार हम दिशा भटक जाते हैं, वो एज ऐसी है जहाँ अगर हमको सही गाइडेंस मिल गई और कोई ऐसा फ्रेंड जैसा व्यक्ति मिल गया जो हमको गाइड, क्योंकि फ्रेंड्स तो गाइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी उन्हीं उसी सिचुएशन से निकल रहे हैं और आप उस एज में अपने माता पिता की एज वाले लोगों से अपना दिल खोलते नहीं है, तो आपको कोई गाइड चाहिए जो आपको इस रास्ते से निकाले और थोड़ी सी गाइडेंस दे। तो मुझे लगा कि ये पार्ट अगर मैं प्ले कर पाई तो मेरे जीवन में जो मीनिंगफुलनेस है कि मैं ये जीवन जी रही हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। यही करते करते ये प्रोग्राम मैंने कई सारे कॉलेजेस में सिखाए पुणे में. फिर उसके बाद मुझे मौका मिला कि हम कंबोडिया जाके आर्ट ऑफ लिविंग को शुरू करें.
4: क्या बात.
5: हाल ही में मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ही हैं और मुझे लगा कि इतना बड़ा विश्वास किया है गुरुदेव ने और मेरी संस्था ने कि हम दोनों वहां जाके कुछ कर पाए, तो हमने वो एक्सेप्ट किया और शादी के 10 दिन के अंदर हम उस देश में थे. तो जाके मुझे पता चला कि वो लोग उस दौरान इतना अंग्रेजी नहीं समझते थे और मुझे उनकी भाषा नहीं आती थी. तो शुरू में तो मुझे बहुत समझने में वक्त लगा कि यहाँ काम शुरू कैसे किया जाए. फिर कुछ हफ्तों बाद मुझे लगा कि चलिए अगर यहाँ आए तो कुछ करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाना है कि आए और कुछ नहीं कर पाए. क्योंकि शुरू के कुछ महीने मुझे समझ नहीं आ रहा था काम करना कैसे. कोर्स में लोग आते थे 2-3-4 तो मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिली. तो फिर हमने वहाँ की लैंग्वेज सीखी 2 महीना और फिर पकड़ के लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू किया. फिर करते करते लोग जुड़ना शुरू हुए और होते होते 1 साल के अंदर हमारे एक एक कोर्स में 50-60-100 लोग आने लगे.
4: अच्छा अच्छा.
5: और वो देश ऐसा है जो जिसमें 70% यंगस्टर्स हैं. वॉर स्ट्रिकन कंट्री है. 1990 तक वहाँ पर युद्ध चला है. तो ऐसा समझ लीजिए कि एक जनरेशन ही नहीं है उस देश का. तो बच्चों में बच्चे दिशाहीन हैं, डायरेक्शनलेस हैं. उनको किस क्या अपनाना है अपने कल्चर का क्या. एक होता है जब आपकी वैल्यूज स्ट्रांग हो तो आपकी जड़ें मजबूत हो तो आप अपना क्या बोलते हैं अपने कल्चर में प्राइड लेते हैं, है ना. वो भारत में भी मैं बहुत मिसिंग देखती हूँ. हम बात करते हैं तो शायद वो बात करने के से आ जाता है. तो वहां पर भी मैंने ये देखा कि ये चीज अगर हम ये ज्ञान उनकी तरफ लाएंगे तो उनमें भी बहुत चेंज आएगा. और ऐसा ही हुआ. तो 1 से 10 लोग जुड़ने लगे, 10 से 100 तक बात जाने लगी. तो कुछ ही महीनों में 2-3 सालों में वहाँ वॉलंटियर्स बन गए और अभी वहाँ 2-3 टीचर्स भी हैं और वहाँ का एक बेस जो हमने तैयार किया. हमने 7 साल वहाँ काम किया. फिर वहाँ पर जब कुछ टीचर्स बन गए और काम चलने लगा तो हम भारत आए थे. तब मेरा बेटा हुआ था तो हम आए थे कि 6 महीने में वापस जाएंगे. लेकिन जैसे आए, जब वो पैदा हुआ तो उसी हफ्ते कोविड आगमन हुआ तो फ्लाइट सब शट डाउन हो गई. तो हम जा नहीं पाए. ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि बच्चे के साथ मैं भारत में रह पाई अपने परिवार के साथ. और फिर ऑनलाइन काम करना शुरू किया. तो 3 साल मैंने हर दूसरे हफ्ते एक ऑनलाइन प्रोग्राम लिया ही है. और आप मानेंगे कि ऑनलाइन जब कोविड हुआ तब शायद लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. तो हमने ये देखा कि चलो हम अनाउंस करते थे कोर्स और अपने आप 20-25 जन आते थे. तो मैंने हफ्ते में 3-3 बार सेशंस लिए हैं. छोटे बच्चे को 2 महीने के गोद में

0: के सेशंस लिए हैं कि तो मुझे भी एक अपलिफ्टमेंट लगता है, जितनी बार हम इस ज्ञान के बारे में बात करते हैं उतना मुझे भी अपलिफ्टमेंट लगता है और लोगों तक तो वो बात पहुंचती ही है। तो अब क्योंकि कोविड के बाद सब ओपन होना शुरू हुआ है तो हम फिर से मैंने सोचा कि ट्रैवल किया जाए और गुरुदेव आ रहे हैं इस बेल्ट में और उनका स्केड्यूल देख के मुझे लगा कि अब तो शायद पुराने जो मेरे कनेक्शंस थे जो इतने अभी शायद जागरूक नहीं है क्योंकि लोग घर में बैठ के बहुत कन्वीनियंस से ऑनलाइन काम कर पा रहे हैं आज, तो इस कारण फिर मैंने दोबारा इस बार ट्रैवल किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ।
1: जैसे कि पारुल जी आपने आपकी लाइफ की जर्नी भी इस तरीके से सुना रही है कि हमको सुनने को बहुत एक क्यूरियोसिटी महसूस हो रही है, बहुत आनंद भी प्राप्त हो रहा है कि आपने इस तरीके से आपकी जर्नी कंप्लीट की है। तो जैसे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग को जुड़ने के बाद आपके लाइफ के अंदर इतना चेंज आ गया, जैसे तो आप दिल्ली में रहते हो, देश की राजधानी है, तो हमको एक सोचना कि जैसे आप देखती हो कि उस्मानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि नीति आयोग का मोस्ट एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर थर्ड नंबर पे आता है उस्मान डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसा थोड़ा पिछड़ा ऐसा कहा जाता है। यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ की लड़कियाँ हैं, उनके भी जो सोच है, तो आप क्या महसूस करती हो और यहाँ की जितनी भी लड़कियाँ हैं महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या ऐसा सजेशन देना चाहोगी कि आपके लाइफ में भी चेंज आएगा, क्योंकि आपके लाइफ में भी स्ट्रगल था, यहाँ पे भी स्ट्रगल है, हो सकता है कि स्ट्रगल अलग अलग हो लेकिन स्ट्रगल है, लेकिन आपने भी उस स्ट्रगल को ओवरकम करते हुए आपने एक लाइफ की जर्नी की और आज बहुत हैप्पी लाइफ आप जीती हो। हाँ, आपका एमएनसी का जॉब भी छूट गया लेकिन आपकी जो खुशी है वो नहीं छूटी है, तो आप क्या कहना चाहोगी यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के लड़कियों के लिए?
0: मैं जो भी अभी 4-5 दिन में इतने लोगों से मिली हूँ, जो प्रोग्राम भी मैं ले रही हूँ उसमें ज्यादा लड़कियां ही हैं, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ मुझे जो सिंसेरिटी दिखी वो शायद मुझे दिल्ली में इतना नहीं दिखता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और यहाँ जो जितने भोले भाव से ये बातें जो हम कर रहे हैं उसकी गहराई लोग अनुभव कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ जितनी सांत्वना मिली प्रोग्राम कंडक्ट करने में भी सिखाने में भी वो मुझे दिल्ली जैसे शहर में उतना अनुभव नहीं होता। वहाँ लोगों के बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं और उसके बीच में नो ये ज्ञान का, लेकिन यहाँ पर मुझे एक अलग बात दिखती है। और यहाँ की लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को कम नहीं समझिए, आप कुछ भी करना चाहते हो वो बैलेंस करके ही करना है उसी में, क्योंकि देखिए हमारे ब्रेन के भी लेफ्ट और राइट पार्ट्स हैं। यदि लेफ्ट ब्रेन को नर्चर किया जाए तो आपकी लॉजिक रीजनिंग, आपकी बातें, आपका डिस्कशन ये इनकरेज होता है। राइट ब्रेन को इनकरेज किया जाए तो ध्यान, संगीत, लव, फेथ ये सब नर्चर होता है। हमको दोनों भाग चाहिए जीवन, उसी तरह से लाइफ जीते हुए भी आपको दोनों भाग चाहिए। आपको अपना एक पहचान भी बनानी है दुनिया में और आपको घर भी संभालना है, वो भी जरूरत है और ये भी जरूरत है। तभी मुझे लगता है अंदर से एक विश्वास कह लीजिए या एक सांत्वना होती है कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि गांव छोड़ के शहर में जाना ये तो सभी ने किया है इतने टाइम से, लेकिन शहर जरूर जाइए, वहां जाके आप देखिए कि क्या अच्छी बातें आप ले सकते हो, लेकिन ज्ञान लेके वापस इधर आके यदि आप उसे इम्प्लीमेंट करें,
1: बहुत अच्छी बात है ये,
0: तो देश बहुत समृद्ध और स्ट्रांग हो जाएगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
1: बहुत अच्छा।
0: ये बात मैं कहने वाली थी कि जिनके कारण मैं आज मुझे बुलाया है वो पुणे में एक कॉलेज का स्टूडेंट है।
1: अच्छा,
0: था
1: अच्छा।
0: 10 साल पहले जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं कॉलेज से पढ़ के ज्ञान लेके एक्सपीरियंस लेके वापस अपने गांव जाऊंगा और वहां अपने गांव की जड़ें मजबूत करूं।
1: क्या बात है।
0: तो अभी शिवगिरी नाम है उनका, वो एक एचओडी भी हैं यहाँ के कॉलेज के। आज सुबह उन्होंने मुझे अपने बच्चों से भी मिलवाया, उनके ऊपर भी एक लेक्चर हुआ और बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है वो। जितने लोग अभी मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं वो उनसे इंस्पायर होके आए हैं। तो ऐसे लीडर्स हमें हर जगह चाहिए।
1: अच्छा, श्रोतेव आपण जी चर्चा करत आहोत ते पारुल खुराना यांच्याशी, त्या मूळतः दिल्लीच्या राहणाऱ्या आहेत, आर्ट ऑफ लिव्हिंगशी जुडलेले आहेत, त्यांनी स्वतः इंजिनिअरिंग केलेलं आहे, इंजिनिअरिंगमधली मास्टर डिग्री पण घेतलेली होती, 5 वर्षे ते मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये काम केलेल्या होत्या, आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून अनेक युवकांना युवतींना त्यांनी प्रेरित केलेलं आहे, कंबोडियामध्ये सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे आणि सध्या तर ते पूर्ण वेळ देऊन आपल्या सर्वांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आत्ताच्या मुलाखतीतून सुद्धा ते जाणून येत आहे। पारुलजी जैसा की मैंने आपके अभी के मुलाकात के जरिए, आपके बातचीत के जरिए जाना कि आर्ट ऑफ लिविंग के बाद आपको बहुत सारी हिम्मत भी मिली, फैमिली का भी सपोर्ट आपको था, तो जैसे कि गुरुजी का भी आपको सानिध्य मिला होगा, तो जैसे 2 फरवरी को यहाँ पे गुरुजी आ रहे तुलजापुर में, तो आप क्या कहना चाहोगी कि यहाँ के जो महिलाएं हैं, युवक है, युवतियाँ हैं, तो उन्होंने इस प्रोग्राम में किस तरीके से शामिल होना चाहिए ताकि उनको भी ऐसा एक लाइफ का एक्सपीरियंस मिले और कुछ तो इंस्पिरेशन के जरिए वो आगे बढ़े।
0: मुझे ऐसा लगता है तुलजापुर में इस क्षेत्र में जो भी अभी इस रेडियो को सुन रहा है, सभी को एक बार गुरुदेव का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो जो ज्ञान बात करते हैं वो देश देश हिला रहा है। जब हम कंबोडिया गए थे, वहाँ की रेडियो ने हमको बुलाया था कि आप इंटरव्यू के लिए आए, उन्होंने पहला प्रश्न हमसे पूछा था कि आप यहाँ इतना लेट क्यों आए। 2013 में हमने वो कंट्री स्टार्ट की है, और 2014 में ये इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि इतना लेट क्यों। तो मैं ये बोल रही हूँ कि गुरुदेव कई बार बोलते हैं आप ऐसी धरोहर पे बैठे हो जो दुनिया हिला सकती है। शायद वो उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि अब मैंने एक ऐसे देश में काम किया है जहाँ 40 लाख लोग दुनिया भर से आते हैं हर साल, टूरिस्ट कंट्री है, और शायद 20-25-30 देशों के लोगों को सिखाया होगा, हर प्रोग्राम हमारा कई सारे देशों के लोग बैठते थे, तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारे पास जो ज्ञान है, जो वैल्यूज है, जो फैमिली सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है जिसको हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कई बार, वो ज्ञान भी दुनिया में मिसिंग है। तो ऐसे ज्ञान के प्रचारक, ऐसे पीस एम्बेसडर जो देश देश जाके ये जागरूकता फैला रहे हैं, वो आपके देश आपके घर आ रहे हैं, वो उनसे मिलने का एक मौका आप गवाए नहीं। और आप महिलाओं की बात कर रहे थे, मुझे अभी याद आया, कंबोडिया में मैंने एक चीज सीखी, हम जहाँ जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखते हैं, वो एक फीमेल ड्रिवन लैंड है, उसको गुरुदेव जब आए तो उन्होंने बोला था इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को पहले श्री विद्यापुरम बोला करते थे, शायद ये हजारों साल पहले की बात होगी। वहां लड़की जिम्मेदारी ज्यादा लेती है, और ऐसा सिस्टम है कि शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है, तो लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है, माता पिता का ध्यान भी रखती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है, जॉब भी करती है और एक बिजनेस भी करती है।
1: क्या बात।
0: तो बिजनेस तो घर घर में एक क्या बोलते हैं उसको, पक्का है, वो तो है ही है, कोई ना कोई बिजनेस जरूर है, जॉब आती जाती रहती है, उनके शायद कल्चर में ऐसा। तो मैंने वहां यहाँ जाके जो मुझे प्रेरणा मिली कि यहाँ की तो एक एक लड़की ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पक्का निभा रही है, तो मुझे वहां जाके ऐसा लगता था कि मेरे देश की लड़कियों को और महिलाओं को एक बार ये देखना और जानना जरूर चाहिए। तो जो शायद आपके माध्यम से आज मैं बात पहुंचा रही हूँ कि हमें आज स्पेशली कोविड के जो इस एरा ने हमको बहुत बड़ी देन दी है, आपको घर बैठे आज हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब आप घर बसाएंगे, शादी करेंगे और बच्चे होंगे, उनको आपका पूरा साथ चाहिए, और ऐसे में आप अगर घर बैठे कुछ कर सकें, डिजिटली कुछ कर सकें, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इस तरफ यदि हम आज तो इंटरनेट घर घर पहुंचा है, गाँव गाँव पहुंचा है, तो इस से रिलेटेड इस डायरेक्शन में, इस दिशा में यदि हम सोचना शुरू करें तो हमारी सोच आसमान छू सकती है। बिजनेस कोई खोलना चाहे, सब कुछ ऑनलाइन चल सकता है ना, तो ये मुझे लगता है महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की।
1: अच्छा पारुल जी, जैसे कि आपने तो आपकी लाइफ की जर्नी भी कही, आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आ गए वो आपके आपने हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए सही में देखा जाए ना तो आप जो जो एक्सपीरियंस कह रही थी उसके अंदर से हमको एक एक पॉइंट मिलते जा रहा है कि यार नहीं, लाइफ ऐसे तरीके से जीना है। तो आप खुद को कहाँ पे पाती है, इसके आगे आपको क्या करना है, आपको आपके एम्स क्या है आगे लाइफ में भी, क्योंकि एज पर आप तो बहुत यंग हो, तो आप लाइफ में आगे और क्या करना चाहोगे ऐसा आपको लगता है?
0: मैं आपको एक अनुभव अपना बताती हूँ, मैं जितनी संतुष्ट अभी हूँ पिछले 10 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जुड़ के, गांव गांव जाके, सिटीज जाके, जो यंगस्टर्स के साथ जो मेरा कनेक्शन बना है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार बन रहा है।
1: क्या बात।
0: और ये परिवार बढ़ते जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। तो ये जिम्मेदारी लेने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी दिशा में आगे बढ़ती जाऊं और कुछ ऐसा करूं कि देखिए हम 60, 70, 80, 90 से ज्यादा तो है नहीं इस पृथ्वी पे और कोविड ने ये सिखाया है कि कभी भी जा
1: कभी सकते हैं। बिल्कुल, उसका उसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा,
0: कोई टाइम ही नहीं रहेगा
1: कभी भी।
0: क्योंकि कोविड जैसी बीमारी अगर आ सकती है तो कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है जाने से पहले यदि हम कुछ अपना योगदान देके जाएं और ऐसा कुछ करके जाएं कि लगे कि हाँ कुछ किया
1: किया,
0: ऐसे ही नहीं अपने लिए जी के चले गए।
1: एंड पॉइंट पे जब भी हमको लगे कि अब जाना है निकलना इस धरती से तो हमको दिल में रहना चाहिए कि हमने कुछ तो किया है।
0: और ये ज्ञान में ऐसा नहीं है कि अपनी जॉब छोड़ के यही करना, ऐसे नहीं। मेरा ये रहता है कि आप जो भी कर रहे हो उसके साथ थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ, क्योंकि जब हम अपने आप को पहचानते हैं, हम थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं तो आगे जीवन में क्या करना है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये आपका निर्णय है, फिर 10 लोगों से पूछते नहीं फिरेंगे कि ये करें कि वो करें। वो जो कंफ्यूज्ड माइंडसेट है जिसमें आज बहुत सारे लोग जीते हैं, वो कंफ्यूजन ऐसे ड्रॉप हो जाएगा जब आप अपनी प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ाएंगे ध्यान के माध्यम से। तो अगर ध्यान घर घर पहुंच जाए, स्पेशली यंगस्टर्स में पहुंच जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का जो एक पर्पस है ना वो मीट होता है। तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि एक कुछ मिनट का ध्यान या सुदर्शन क्रिया या डीप मेडिटेशन यदि आप करने लगे, कुछ नहीं, शायद दिन का आधा घंटा बस, इतना इन्वेस्टमेंट है, आप देखोगे कि 23.5 घंटे आपके एक एक एनर्जी में जाएंगे, एक अच्छी सकारात्मक सोच आती है, फिर आपको ज्यादा गाइडेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि आपके अंदर से आवाज आती है कि मुझे यही करना है। तो ये मार्गदर्शन शायद प्रकृति की देन है जो कि हम पहचान नहीं पाते।
1: अच्छा, तर श्रोते आणि मित्रांनो, खरंतर पारुलजी यांच्याशी अजूनही आपण तास दोन तास अशी चर्चा करत राहू शकतो आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्याला असंच वाटणार आहे की आणखीन काहीतरी राहिलेलं आहे, पण आपल्याला वेळेचं बंधन पाळावं लागेल। पारुलजी खुराना मूळतः दिल्लीच्या आहेत आणि प्रवास करत करत करत ते आता उस्मानपर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि आपल्या सर्वांना ते इतर कोर्स घेऊन अनेक युवकांना प्रेरित करतच होते। आपण आज आपल्या रेडिओ तेरणाच्या माध्यमातून सुद्धा ऐकणाऱ्या अनेक हजारो श्रोत्यांना, लाखो श्रोत्यांना त्यांनी या ठिकाणी प्रेरित केलेला आहे। पारुलजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप यहां पे आई, आपने वक्त निकाला और रेडिओ तेरणा को भी इनकरेज किया आपने आके, आपके प्रेजेंस से यहां पे हम भी बहुत इनकरेज हो गए, तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं।
0: थैंक यू कि आपने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंच सके, तो मुझे भी मैं आभारी हूं आप।
1: तेव्हा मित्रांनो, आपण ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपण ट्यून करा 90.4 FM, किंवा आपण क्रिस्टल क्लिअर आवाजात आपल्या घरात, जगात, गावात कुठेही ऐकण्यासाठी डाउनलोड करा आमचा रेडिओ तेरणा ॲप गुगल प्ले स्टोअरवरून किंवा ॲप स्टोअरवरून। आपण रेडिओ तेरणा हे रेडिओ गार्डनवर पण ऐकू शकता। पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेरणा, किंवा आपण www.radio.coeusmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊनही ऐकत रहा रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज।

वाम हिलता इश्क हता एटम वाम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता एटम वाम

0: आपण ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा, ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।
1: तुम्हाला माहित आहे का, जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये आरोग्य विषयक मोफत सेवा हे आजही एक स्वप्नच आहे, पण भारतात मात्र हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे। आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून 60 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार दिले जात आहे आणि 19,000 पेक्षा जास्त जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून तब्बल 90% कमी किमतीत औषधे उपलब्ध करून दिली जात आहेत।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची।
3: प्रवेशासह करिअरची सुवर्ण संधी, तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित तेरणा कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय धाराशिव विथे।
0: 12वी पास ना BCA, 12वी सायन्स पास ना BSC कॉम्प्युटर सायन्स, BSC जनरल तसेच BCOM BA, MSC कॉम्प्युटर सायन्स, 11वी आर्ट व कॉमर्स शाखेत प्रवेश देणे सुरू।
3: विद्यापीठातील पहिले संगणक शास्त्र महाविद्यालय, ब्रॉडबँड इंटरनेट सह सुसज्ज 3 कॉम्प्युटर लॅब, VC द्वारे गेस्ट लेक्चर सुविधा, उच्च विद्याविभूषित प्राध्यापक वृंद,
0: शासनाच्या करिअर कट्टा उपक्रमाद्वारे मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन सुविधा, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासन नियमानुसार शिष्यवृत्ती।
3: संपर्क प्राचार्य डॉक्टर DB मोरे सर, तेरणा महाविद्यालय, MIDC परिसर, धाराशिव। मोबाईल 94 22 92 96 78, 94 21 358 408 आणि 94 21 36 10 71। नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। मित्रांनो, रेडिओ तेरणाच्या माध्यमातून आपण अशा व्यक्तिमत्वांची भेट घेत असतो किंवा अशा व्यक्तिमत्वांच्या माध्यमातून आपल्याला प्रेरणा मिळत असते की ज्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये एक वेगळं ध्येय धोरण ठरवलेलं असतं आणि त्याप्रमाणे ते मार्गक्रमण करत असताना आयुष्यामध्ये अनेक अनुभव आलेले असतात आणि त्या अनुभवाचं शेअरिंग करत असताना निश्चितच आपल्याला मन एक प्रेरणा मिळत असते, इन्स्पिरेशन मिळत असते। अगदी त्याच पद्धतीनं आज आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेला आहे पारुल खुराना मॅडम यांना। त्या मूळतः दिल्लीच्या राहणाऱ्या आहेत आणि सध्या त्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना, युवकांना खूप चांगल्या पद्धतीनं प्रेरित करतात। आजच्या या मोबाईलच्या, इंटरनेटच्या, सोशल मीडियाच्या जगामध्ये आपलं ध्येयधोरण कसं असायला पाहिजे, आपण आपल्या करिअरमध्ये कशा पद्धतीनं पुढे जायला हवं आणि आपल्या ज्या फॅमिली प्रायोरिटीज असतात, आपलं जे कौटुंबिक जीवन असतं ते पण कशा पद्धतीनं निर्भय असायला पाहिजे आणि चांगलं असायला पाहिजे याविषयी ते मार्गदर्शन करत असतात आणि त्यांचा असा हा 5-6 दिवसाचा कोर्स सुरू असतो। आजही त्या उस्मानाबादमध्ये आहेत आणि उस्मानाबादमध्ये अशाच पद्धतीचा त्या कोर्स घेत आहेत। आज आपण त्यांच्या जीवनाविषयी आणि त्या एकूणच कशा पद्धतीनं लाईफ स्किल शिकवतात याविषयी आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। पारुल खुराना मॅडम जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा में।
4: नमस्ते।
3: जैसे कि पारुल जी, मैंने अभी आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि आप मेनली दिल्ली से हो और यहाँ पे आप कुछ युवकों को, जो कॉलेज के स्टूडेंट है, उनको एक आप गाइडेंस का प्रोग्राम यहाँ पे कर रही हो, तो वो क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रही हो अभी?
4: तो मैं कई सालों से कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हूँ आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से। बहुत सारे यंगस्टर्स, यूथ बेस्ड प्रोग्राम्स मैंने लिए हैं जिसमें हम ये यंगस्टर्स को एक ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, एक ऐसा प्रोग्राम के माध्यम से उनको जीवन में एक बैलेंस बनाना सिखाते हैं कि आप अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसमें आगे बढ़ते चलें और उसमें बढ़ते हुए आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको डील कैसे करना है।
3: जी जी।
4: तो यदि हम दिन का कुछ भाग इन्वेस्ट करते हैं ध्यान करने में, प्राणायाम करने में, ध्यान की गहराई में जाने में, तो आप ये देखेंगे कि आप जो भी करते हैं उसकी तरफ आपकी गति भी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ज़्यादा तेज होगी, आपका जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ आपके कदम तेजी से बढ़ने लगेंगे और आप जीवन में कुछ बड़ा करेंगे।
3: जी,
4: ना
3: जी।
4: हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं है मेरी जो स्किल्स हैं वो आपकी स्किल्स हों. तो इसी तरह एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक, और उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए ये मार्गदर्शन यदि कोई कर दे, कोई गाइडेंस हमको सही दे दे, तो हमारा आगे चलना बड़ा आसान हो जाता है. सो इट इज माय पैशन टू बी एसोसिएटेड विद कॉलेज स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, एंड गाइड देम थ्रू देयर चैलेंजेस एंड दे लिव अ बेटर लाइफ.
3: जी जी, जैसे कि पारुल जी अभी आपने कहा कि एक तो आपने बहुत सारी एक छोटी सी इस बात में आपने कह दिया कि आजकल के यंग जनरेशन किस तरीके से जीना चाहिए, उसके हिसाब से आप उनको गाइडेंस करती है ध्यान प्राणायाम के हिसाब से, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति है और जिसको पूरे दुनिया ने भी माना हुआ है. तो लेकिन हम अगर आपके तरफ देखना चाहे, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे, तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा भी था कि आपका इंजीनियरिंग भी हो चुका है, साथ में आपने इंजीनियरिंग में मास्टर भी किया हुआ है और आपने मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया हुआ है, तो थोड़ी सी आपके लाइफ की जर्नी के बारे में भी हमारे सब श्रोताओं को आप कुछ बताना चाहेंगे तो.
4: जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. जब मैं 6 महीने की थी तो मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट जब ऑपरेट किया गया तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ
3: जी.
4: तो मेरे पिता 8 से 10 साल बेड पे थे, और मेरी माँ ने मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण किया है फाइनेंशियली, इमोशनली, एजुकेशन वाइज. तो मैंने बचपन में ऐसा एनवायरनमेंट देखा जिससे हम जब बड़े हुए तो इमोशनली थोड़े से वल्नरेबल थे, थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा थे. किसी ने कुछ कह दिया तो मन पे लग गई. दोनों हम पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं, एकेडमिकली वी हैव बीन वेरी ब्राइट. और लेकिन दुनिया को फेस करने के लिए जो लाइफ स्किल्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने आप को प्रूव करने का एक प्रेजेंटेशन चाहिए, अपने अंदर एक आत्मबल चाहिए, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानने की शक्ति चाहिए, वो शायद मेरे अंदर उतनी नहीं थी. जब मैं अपनी पहली जॉब कर रही थी इंजीनियरिंग में भी, मैं टॉप रैंकर्स में से हूँ अपने स्कूल की और कॉलेज की, और जब मैंने मास्टर्स करके पहली जॉब में थी तो मेरे ही एक मित्र ने मुझे बोला कि तुम ये प्रोग्राम करो, तुम्हारी लाइफ और अच्छी होगी. अच्छा. तो मैंने जब ये प्रोग्राम किया 2009 में,
3: अच्छा.
4: तो मैंने ये देखा कि अगले कुछ दिनों में मुझे एक एनर्जी का अनुभव हुआ. अच्छा. सुबह से रात तक मैं काम करती थी ऑफिस में, अच्छी थी काम करने में, और लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद मेरे अंदर एक एनर्जी बाकी थी. तो ऐसा नहीं था कि जैसे पहले मैं थक गई और हर दूसरे दिन मुझे एक हेडेक हो रहा है और मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस आता था कि डेडलाइन है, कंप्लीट करना है. यू नो, आप देखोगे जो टॉपर्स रहते हैं उनको अपने अंदर एक स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है कि नहीं यार मुझे अच्छा करना है एग्जाम. तो एक तरीका है हम लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेसफुली लेके आगे बढ़े, दूसरा तरीका है हम स्ट्रेस फ्री रहते हुए काम को करते जाएं. और मुझे ऐसा अब लगता है इतने सालों के ये प्रैक्टिस के बाद कि जो स्ट्रेस फ्री रहने वाला तरीका है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें यदि आपको फेलियर भी मिले तो आपको अंदर तक लगेगा नहीं, आप उस फेलियर से लर्निंग लेके आगे बढ़ जाओगे. तो वो जर्नी मेरी शुरू हुई इस प्रोग्राम के बाद. अगले 6 महीनों में मुझे 3 अप्रेजल्स हुए.
3: अच्छा.
4: जो बहुत ही मेरे लिए एक नई बात थी और शायद मेरी टीम के लिए भी नई बात थी कि एक फ्रेशर को उन्होंने इतना सम्मान दिया. इसके बाद बस लाइफ में आप समझिए कि ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ने के लिए मुझे एक मार्ग जैसे दिख गया था. जो भी मैं करना चाहती थी वो अचीव कर पाती थी, और यदि नहीं भी अचीव किया तो उससे एक सीखा और आगे बढ़ते चले गए. तो इस प्रोसेस में जैसे कभी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो घर पे झगड़ा हो गया, माता पिता से झड़प हो गई, या फिर अपने दोस्तों में अनबन हो गई, वो सब होना भी बहुत मिनिमम हो गया. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे झगड़े होने बंद हो गए, झगड़े होते हैं अभी भी होते हैं, लेकिन 10 मिनट 11वें मिनट नहीं रहता.
3: अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, उसको कैसे डील करना है,
4: चीजों को देखने का नजरिया बदल गया. सामने वाले की सिचुएशन अलग हो सकती है ये जानने का गहराई बढ़ गई. और सिचुएशन को डील करना और उसको रिस्पोंड करने की एक अलग दूरदर्शिता आई मेरे अंदर, एक फोरसाइट आई कि ऐसा भी हो सकता है, चलो ऐसा करके देखते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी जो आजकल मैं देखती हूँ कि यंगस्टर्स में काफी मिसिंग है. मुझे चीजें ऐसी चाहिए, ऐसी ही चाहिए, नहीं मिलेंगी तो नहीं चलेगा. ये एटीट्यूड से यदि हम जीवन जिएंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर हमारे साथ जो रिश्ते चलेंगे वो रिश्ते टूटेंगे. आज मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे शादियों में भी प्रॉब्लम्स हैं, या तो शादियां हो नहीं रही या फिर करते हैं तो एक दो साल के अंदर टूट जाती। तो मैं लड़कियों को तो स्पेसिफिकली ये बोलती ही हूँ कि आप अपने घर की स्पाइनल कॉर्ड है, यदि एक घर की महिला आप मजबूत जड़ों की होगी तो वो घर में सब ठीक चलता है। ये मैंने अपनी माँ से अनुभव किया।
3: वाह, क्या बात है।
4: तो वो उन्होंने जब ये सिचुएशन फेस किया, जब मेरे फादर 8 साल चल नहीं पाए, उनकी बीमारी पे खर्चा था, घर का खर्चा था, हमारी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जॉब भी करी और वो घर में भी हमको पूरा प्यार दिया। उनकी ट्रांसफरेबल जॉब रही है, वो केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रही है और असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुई है।
3: क्या बात।
4: तो वो उन्होंने ट्रांसफरेबल जॉब के साथ अप डाउन किया बीच में हमको देखने के लिए कि हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। इस बीच में फादर ने भी खूब सपोर्ट किया, लेकिन लीड रोल मेरी माँ ने लिया। तो ये मेरी इंस्पिरेशन भी रही है कि अपनी फैमिली को नज़रअंदाज करते हुए हम अपने करियर की ओर बढ़ेंगे। तो एक पार्ट, आधा पार्ट जीवन का पीछे छोड़ दिया हमने।
3: क्या बात।
4: तो वो दोनों चीजें बैलेंस करके आगे बढ़ना है और ये जिम्मेदारी मुझे ऐसे लगता है महिलाओं की ज्यादा है। गर्ल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि एक बैलेंस का जो एक क्वालिटी है ना, वो एक लड़की में नेचुरली आती है। कि काम के बीच में बच्चे को संभालते हुए या शादी को संभालते हुए अपना करियर बना लेना, ये लड़की बहुत अच्छे से जानती है, नेचर से शायद गिफ्टेड है। कि हम लोगों को ये एक सिक्स्थ सेंस भी होता है और बैलेंस का एक बड़ा नेचुरल तरीका भी होता है। आप देखिए, हमारे ही पुराने संस्कारों में ये है कि महिला पैसे बचाती थी और जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ देती थी। तो वो उतनी सोच और उतनी संभालना, वो एक महिला का बड़ा नेचुरल वो है। और मैं ये जब महाराष्ट्र में मैंने बहुत साल काम किया है और जिस कारण मैं आज यहाँ आई हूँ वो मेरा ही एक स्टूडेंट है।
3: नहीं नहीं, मैं उसी के ऊपर आना चाहता था पारुल जी, लेकिन जो आपने अभी तक कहा उसको थोड़ा सा मैं एक जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि जैसे मैं हमारे रेडियो तेरना से भी बहुत सारे हमने तेरना एल्युमिनी के इंटरव्यूज किए हैं, तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है जिनको हर एक कंपनी में जॉब चाहिए, एक जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उनका माइंड सेट उस तरीके से रहना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे की पॉइंट्स जो आपने अभी कहा है उसके अंदर से उनको मिल सकते हैं, ये तो बात है। साथ में दूसरी एक बात ऐसी है कि मैं आपको भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग का आपने कोर्स किया और आपके लाइफ में चेंजेस आ गए, तो उसी तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक है श्री श्री रविशंकर गुरु जी, वो खुद तुलजापुर में, यहाँ का तुलजापुर श्री क्षेत्र जो है वहाँ पे 2 फरवरी 2023 को आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ उनका महासत्संग होने वाला है। लोगों में उत्साह है गुरु जी के दर्शन करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये पूछना चाहता था आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू कि आपके लाइफ में चेंजेस हो गए बाद में, जैसा कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए बहुत काम भी किया, जैसे कि महाराष्ट्र में भी काम किया, देश में भी काम किया और अब्रॉड में भी काम किया, तो उसके बारे में थोड़ी सी क्या जानकारी देना चाहेंगी?
4: हाँ, तो जब मैंने अपने अंदर इतना चेंज देखा, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऐसे परिवार में ऐसी सिचुएशन आई, बाद में ये प्रोग्राम किया और उसकी प्रैक्टिसेस जब मैंने चालू की, मैंने देखा कुछ हफ्तों महीनों के अंदर ही मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी आने लगी, स्थिरता आने लगी। चीजें मुझे जो हिलाया करती थी पहले, उतना अंदर हिलना बंद हो गया। और ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा ये ज्ञान तो हर किसी तक पहुंचना चाहिए और शायद मैं अपने बचे हुए वक्त में कुछ योगदान दे सकूं। तो उन दिनों वॉलंटियर फॉर बेटर इंडिया का मूवमेंट बहुत प्रचलित था और घर घर जाके हमने वोटर आईडी कार्ड्स बनवाने थे, तो उस मूवमेंट के अंतर्गत मेरा सेवा का कार्य शुरू हुआ। मुझे लगा मुझे मेरे देश के लिए कुछ करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। करते करते मुझे इसमें इतना मज़ा आने लगा और कॉलेज में जो यंगस्टर्स हैं, कई बार हम दिशा भटक जाते हैं, वो एज ऐसी है जहाँ अगर हमको सही गाइडेंस मिल गई और कोई ऐसा फ्रेंड जैसा व्यक्ति मिल गया जो हमको गाइड, क्योंकि फ्रेंड्स तो गाइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी उन्हीं उसी सिचुएशन से निकल रहे हैं और आप उस एज में अपने माता पिता की एज वाले लोगों से अपना दिल खोलते नहीं है। तो आपको कोई गाइड चाहिए जो आपको इस रास्ते से निकाले और थोड़ी सी गाइडेंस दे। तो मुझे लगा कि ये पार्ट अगर मैं प्ले कर पाई तो मेरे जीवन में जो मीनिंगफुलनेस है कि मैं ये जीवन जी रही हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। यही करते करते ही प्रोग्राम मैंने कई सारे कॉलेजेस में सिखाए पुणे में. फिर उसके बाद मुझे मौका मिला कि हम कंबोडिया जाके आर्ट ऑफ लिविंग को शुरू करें.
3: क्या बात.
4: हाल ही में मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ही हैं और मुझे लगा कि इतना बड़ा विश्वास किया है गुरुदेव ने और मेरी संस्था ने कि हम दोनों वहां जाके कुछ कर पाए, तो हमने वो एक्सेप्ट किया और शादी के 10 दिन के अंदर हम उस देश में थे. तो जाके मुझे पता चला कि वो लोग उस दौरान इतना अंग्रेजी नहीं समझते थे और मुझे उनकी भाषा नहीं आती थी. तो शुरू में तो मुझे बहुत समझने में वक्त लगा कि यहाँ काम शुरू कैसे किया जाए. फिर कुछ हफ्तों बाद मुझे लगा कि चलिए अगर यहाँ आए तो कुछ करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाना है कि आए और कुछ नहीं कर पाए. क्योंकि शुरू के कुछ महीने मुझे समझ नहीं आ रहा था काम करना कैसे. कोर्स में लोग आते थे 2-3-4 तो मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिली. तो फिर हमने वहाँ की लैंग्वेज सीखी 2 महीना और फिर पकड़ के लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू किया. फिर करते करते लोग जुड़ना शुरू हुए और होते होते 1 साल के अंदर हमारे एक एक कोर्स में 50-60-100 लोग आने लगे.
3: अच्छा अच्छा.
4: और वो देश ऐसा है जो जिसमें 70% यंगस्टर्स हैं. वॉर स्ट्रिकन कंट्री है. 1990 तक वहां पर युद्ध चला है. तो ऐसा समझ लीजिए कि एक जनरेशन ही नहीं है उस देश का. तो बच्चों में बच्चे दिशाहीन हैं, डायरेक्शन लेस हैं. उनको किस क्या अपनाना है अपने कल्चर का क्या. एक होता है जब आपकी वैल्यूज स्ट्रांग हो तो आपकी जड़ें मजबूत हो तो आप अपना क्या बोलते हैं अपने कल्चर में प्राइड लेते हैं, है ना. वो भारत में भी मैं बहुत मिसिंग देखती हूँ. हम बात करते हैं तो शायद वो बात करने के से आ जाता है. तो वहां पर भी मैंने ये देखा कि ये चीज अगर हम ये ज्ञान उनकी तरफ लाएंगे तो उनमें भी बहुत चेंज आएगा. और ऐसा ही हुआ. तो 1 से 10 लोग जुड़ने लगे, 10 से 100 तक बात जाने लगी. तो कुछ ही महीनों में 2-3 सालों में वहाँ वॉलंटियर्स बन गए और अभी वहाँ 2-3 टीचर्स भी हैं और वहाँ का एक बेस जो हमने तैयार किया. हमने 7 साल वहाँ काम किया. फिर वहाँ पर जब कुछ टीचर्स बन गए और काम चलने लगा तो हम भारत आए थे. तब मेरा बेटा हुआ था तो हम आए थे कि 6 महीने में वापस जाएंगे. लेकिन जैसे आए जब वो पैदा हुआ तो उसी हफ्ते कोविड आगमन हुआ तो फ्लाइट सब शट डाउन हो गई. तो हम जा नहीं पाए. ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि बच्चे के साथ मैं भारत में रह पाई अपने परिवार के साथ. और फिर ऑनलाइन काम करना शुरू किया. तो 3 साल मैंने हर दूसरे हफ्ते एक ऑनलाइन प्रोग्राम लिया ही है. और आप मानेंगे कि ऑनलाइन जब कोविड हुआ तब शायद लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. तो हमने ये देखा कि चलो हम अनाउंस करते थे कोर्स और अपने आप 20-25 जन आते थे. तो मैंने हफ्ते में 3-3 बार सेशंस लिए हैं. छोटे बच्चे को 2 महीने के गोद में रख के सेशंस लिए हैं. कि तो मुझे भी एक अपलिफ्टमेंट लगता है. जितनी बार हम इस ज्ञान के बारे में बात करते हैं उतना मुझे भी अपलिफ्टमेंट लगता है. और लोगों तक तो वो बात पहुंचती ही है. तो अब क्योंकि कोविड के बाद सब ओपन होना शुरू हुआ है तो हम फिर से मैंने सोचा कि ट्रैवल किया जाए. और गुरुदेव आ रहे हैं इस बेल्ट में और उनका स्केड्यूल देख के मुझे लगा कि अब तो शायद पुराने जो मेरे कनेक्शंस थे जो इतने अभी शायद जागरूक नहीं है क्योंकि लोग घर में बैठ के बहुत कन्वीनियंस से ऑनलाइन काम कर पा रहे हैं आज. तो इस कारण फिर मैंने दोबारा इस बार ट्रैवल किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबसे.
3: जैसे कि पारुल जी आपने आपकी लाइफ की जर्नी भी इस तरीके से सुना रही है कि हमको सुनने को बहुत एक क्यूरियोसिटी महसूस हो रही है, बहुत आनंद भी प्राप्त हो रहा है कि आपने इस तरीके से आपकी जर्नी कंप्लीट की है. तो जैसे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग को जुड़ने के बाद आपके लाइफ के अंदर इतना चेंज आ गया. जैसे तो आप दिल्ली में रहते हो, देश की राजधानी है. तो हमको एक सोचना कि जैसे आप देखती हो कि उस्मानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है. जैसे कि नीति आयोग का मोस्ट एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर 3rd नंबर पे आता है उस्मान डिस्ट्रिक्ट. तो ऐसा थोड़ा पिछड़ा ऐसा कहा जाता है. यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ की लड़कियाँ हैं, उनकी भी जो सोच है, तो आप क्या महसूस करती हो और यहाँ की जितनी भी लड़कियाँ हैं महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या ऐसा सजेशन देना चाहोगी कि आपके लाइफ में भी चेंज आएगा. क्योंकि आपके लाइफ में भी स्ट्रगल था, यहाँ पे भी स्ट्रगल है, हो सकता है कि स्ट्रगल अलग अलग हो, लेकिन स्ट्रगल है, लेकिन आपने भी उस स्ट्रगल को ओवरकम करते हुए आपने एक लाइफ की जर्नी की और आज बहुत हैप्पी लाइफ आप जीती हो। हाँ, आपका एमएनसी का जॉब भी छूट गया, लेकिन आपकी जो खुशी है वो नहीं छूटी है। तो आप क्या कहना चाहोगी यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के लड़कियों के लिए?
4: मैं जो भी अभी 4-5 दिन में इतने लोगों से मिली हूँ, जो प्रोग्राम भी मैं ले रही हूँ उसमें ज्यादा लड़कियां ही हैं, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ मुझे जो सिंसेरिटी दिखी वो शायद मुझे दिल्ली में इतना नहीं दिखता है।
3: अच्छा, अच्छा।
4: और यहाँ जो जितने भोले भाव से ये बातें जो हम कर रहे हैं उसकी गहराई लोग अनुभव कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ जितनी सांत्वना मिली प्रोग्राम कंडक्ट करने में भी सिखाने में भी, वो मुझे दिल्ली जैसे शहर में उतना अनुभव नहीं होता। वहाँ लोगों के बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं और उसके बीच में नो ये ज्ञान का, लेकिन यहाँ पर मुझे एक अलग बात दिखती है। और यहाँ की लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को कम नहीं समझिए, आप कुछ भी करना चाहते हो वो बैलेंस करके ही करना है। उसी में, क्योंकि देखिए हमारे ब्रेन के भी लेफ्ट और राइट पार्ट्स हैं, यदि लेफ्ट ब्रेन को नर्चर किया जाए तो आपकी लॉजिक रीजनिंग, आपकी बातें, आपका डिस्कशन ये इनकरेज होता है। राइट ब्रेन को इनकरेज किया जाए तो ध्यान, संगीत, लव, फेथ, ये सब नर्चर होता है। हमको दोनों भाग चाहिए जीवन, उसी तरह से लाइफ जीते हुए भी आपको दोनों भाग चाहिए। आपको अपना एक पहचान भी बनानी है दुनिया में और आपको घर भी संभालना है, वो भी जरूरत है और ये भी जरूरत है। तभी मुझे लगता है अंदर से एक विश्वास कह लीजिए या एक सांत्वना होती है कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि गांव छोड़ के शहर में जाना ये तो सभी ने किया है इतने टाइम से, लेकिन शहर जरूर जाइए, वहां जाके आप देखिए कि क्या अच्छी बातें आप ले सकते हो, लेकिन ज्ञान लेके वापस इधर आके यदि आप उसे इम्प्लीमेंट करें,
3: बहुत अच्छी बात है ये,
4: तो देश बहुत समृद्ध और स्ट्रांग हो जाएगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
3: बहुत अच्छा।
4: ये बात मैं कहने वाली थी कि जिनके कारण मैं आज मुझे बुलाया है वो पुणे में एक कॉलेज का स्टूडेंट है।
3: अच्छा,
4: था
3: अच्छा।
4: 10 साल पहले जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं कॉलेज से पढ़ के ज्ञान लेके एक्सपीरियंस लेके वापस अपने गांव जाऊंगा और वहां अपने गांव की जड़ें मजबूत करूं।
3: क्या बात है।
4: तो अभी शिवगिरी नाम है उनका, वो एक एचओडी भी हैं यहाँ के कॉलेज के। आज सुबह उन्होंने मुझे अपने बच्चों से भी मिलवाया, उनके ऊपर भी एक लेक्चर हुआ और बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है वो। जितने लोग अभी मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं वो उनसे इंस्पायर होके आए हैं। तो ऐसे लीडर्स हमें हर जगह चाहिए।
3: श्रोतेव, आपण जी चर्चा करत आहोत ते पारुल खुराना यांच्याशी, त्या मूळतः दिल्लीच्या राहणाऱ्या आहेत, आर्ट ऑफ लिव्हिंगशी जुडलेले आहेत, त्यांनी स्वतः इंजिनिअरिंग केलेलं आहे, इंजिनिअरिंगमधली मास्टर डिग्री पण घेतलेली होती, 5 वर्ष ते मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये काम केलेल्या होत्या। आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून अनेक युवकांना युवतींना त्यांनी प्रेरित केलेलं आहे, कंबोडियामध्ये सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे आणि सध्या तर ते पूर्ण वेळ देऊन आपल्या सर्वांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आत्ताच्या मुलाखतीतून सुद्धा ते जाणून येत आहे। पारुलजी, जैसा की मैंने आपके अभी के मुलाकात के जरिए, आपकी बातचीत के जरिए जाना कि आर्ट ऑफ लिविंग के बाद आपको बहुत सारी हिम्मत भी मिली, फैमिली का भी सपोर्ट आपको था, तो जैसे कि गुरुजी का भी आपको सानिध्य मिला होगा, तो जैसे 2 फरवरी को यहाँ पे गुरुजी आ रहे तुलजापुर में, तो आप क्या कहना चाहोगी कि यहाँ के जो महिलाएँ हैं, युवक है, युवतियाँ हैं, तो उन्होंने इस प्रोग्राम में किस तरीके से शामिल होना चाहिए ताकि उनको भी ऐसा एक लाइफ का एक्सपीरियंस मिले और कुछ तो इंस्पिरेशन के जरिए आगे बढ़े।
4: मुझे ऐसा लगता है तुलजापुर में इस क्षेत्र में जो भी अभी इस रेडियो को सुन रहा है, सभी को एक बार गुरुदेव का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो जो ज्ञान बात करते हैं वो देश देश हिला रहा है। जब हम कंबोडिया गए थे वहां की रेडियो ने हमको बुलाया था कि आप इंटरव्यू के लिए आए, उन्होंने पहला प्रश्न हमसे पूछा था कि आप यहाँ इतना लेट क्यों आए। 2013 में हमने वो कंट्री स्टार्ट की है और 2014 में ये इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि इतना लेट क्यों। तो मैं ये बोल रही हूँ कि गुरुदेव कई बार बोलते हैं आप ऐसी धरोहर पे बैठे हो जो दुनिया हिला सकती है। शायद वो उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि अब मैंने एक ऐसे देश में काम किया है जहाँ 40 लाख लोग दुनिया भर से आते हैं हर साल, टूरिस्ट कंट्री है, और शायद 20-25-30 देशों के लोगों को सिखाया होगा, हर प्रोग्राम हमारा कई सारे देशों के लोग बैठते थे, तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारे पास जो ज्ञान है, जो वैल्यूज है, जो फैमिली सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है जिसको हम रिकग्नाइज भी नहीं करते कई बार, वो ज्ञान भी दुनिया में मिसिंग है. तो ऐसे ज्ञान के प्रचारक, ऐसे पीस एम्बेसडर जो देश देश जाके ये जागरूकता फैला रहे हैं, वो आपके देश, आपके घर आ रहे हैं, वो उनसे मिलने का एक मौका आप गवाए नहीं. और आप महिलाओं की बात कर रहे थे, मुझे अभी याद आया, कंबोडिया में मैंने एक चीज सीखी. हम जहाँ जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखते हैं. वो एक फीमेल ड्रिवन लैंड है. उसको गुरुदेव जब आए तो उन्होंने बोला था, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को पहले श्री विद्यापुरम बोला करते थे. शायद ये हजारों साल पहले की बात होगी. वहाँ लड़की जिम्मेदारी ज्यादा लेती है, और ऐसा सिस्टम है कि शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है. तो लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है, माता पिता का ध्यान भी रखती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है, जॉब भी करती है, और एक

0: बिजनेस भी करती है।
1: क्या बात।
0: तो बिजनेस तो घर घर में एक क्या बोलते हैं उसको, पक्का है, वो तो है ही है, कोई ना कोई बिजनेस जरूर है। जॉब आती जाती रहती है उनके शायद कल्चर में ऐसा। तो मैंने वहां यहाँ जाके जो मुझे प्रेरणा मिली कि यहाँ की तो एक एक लड़की ये चार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पक्का निभा रही है। तो मुझे वहां जाके ऐसा लगता था कि मेरे देश की लड़कियों को और महिलाओं को एक बार ये देखना और जानना जरूर चाहिए। तो जो शायद आपके माध्यम से आज मैं बात पहुंचा रही हूँ कि हमें आज स्पेशली कोविड के जो इस एरा ने हमको बहुत बड़ी देन दी है। आपको घर बैठे आज हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और मुझे लगता है महिलाओं के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब आप घर बसाएंगे, शादी करेंगे और बच्चे होंगे, उनको आपका पूरा साथ चाहिए। और ऐसे में आप अगर घर बैठे कुछ कर सकें, डिजिटली कुछ कर सकें, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इस तरफ यदि हम आज तो इंटरनेट घर घर पहुंचा है, गाँव गाँव पहुंचा है, तो इस से रिलेटेड इस डायरेक्शन में, इस दिशा में यदि हम सोचना शुरू करें तो हमारी सोच आसमान छू सकती है। बिजनेस कोई खोलना चाहे, सब कुछ ऑनलाइन चल सकता है ना। तो ये मुझे लगता है महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की।
1: अच्छा पारुल जी, जैसे कि आपने तो आपकी लाइफ की जर्नी भी कही, आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आ गए वो आपने हमारे साथ शेयर किए। इसके लिए सही में देखा जाए ना तो आप जो जो एक्सपीरियंस कह रही थी उसके अंदर से हमको एक एक पॉइंट मिलते जा रहा है कि यार नहीं, लाइफ ऐसे तरीके से जीना है। तो आप खुद को कहाँ पे पाती है, इसके आगे आपको क्या करना है, आपको आपके एम्स क्या है आगे लाइफ में भी, क्योंकि एज पर द आप तो बहुत यंग हो, तो आप लाइफ में आगे और क्या करना चाहोगे ऐसा आपको लगता है?
0: मैं आपको एक अनुभव अपना बताती हूँ। मैं जितनी संतुष्ट अभी हूँ पिछले 10 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जुड़ के, गांव-गांव जाके, सिटीज़ जाके, जो यंगस्टर्स के साथ जो मेरा कनेक्शन बना है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार बन रहा है।
1: क्या बात।
0: और ये परिवार बढ़ते जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। तो ये जिम्मेदारी लेने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी दिशा में आगे बढ़ती जाऊं और कुछ ऐसा करूं कि देखिए हम 60, 70, 80, 90 से ज्यादा तो है नहीं इस पृथ्वी पे, और कोविड ने ये सिखाया है कि कभी भी जा
1: कभी सकते हैं। बिल्कुल, उसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा,
0: कोई टाइम ही नहीं रहेगा
1: कभी भी।
0: क्योंकि कोविड जैसी बीमारी अगर आ सकती है तो कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है जाने से पहले यदि हम कुछ अपना योगदान देके जाएं और ऐसा कुछ करके जाएं कि लगे कि हाँ कुछ किया। ऐसे ही नहीं अपने लिए जी के चले गए।
1: ये एंड पॉइंट पे जब भी हमको लगे कि अब जाना है, निकलना इस धरती से, तो हमको दिल में रहना चाहिए कि हमने कुछ तो किया है।
0: और ये ज्ञान में ऐसा नहीं है कि अपनी जॉब छोड़ के यही करना, ऐसे नहीं। मेरा ये रहता है कि आप जो भी कर रहे हो उसके साथ थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ। क्योंकि जब हम अपने आप को पहचानते हैं, हम थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं, तो आगे जीवन में क्या करना है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये आपका निर्णय है। फिर 10 लोगों से पूछते नहीं फिरेंगे कि ये करें कि वो करें। वो जो कंफ्यूज्ड माइंडसेट है जिसमें आज बहुत सारे लोग जीते हैं, वो कंफ्यूजन ऐसे ड्रॉप हो जाएगा जब आप अपनी प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ाएंगे ध्यान के माध्यम से। तो अगर ध्यान घर घर पहुंच जाए, स्पेशली यंगस्टर्स में पहुंच जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का जो एक पर्पज है ना वो मीट होता है। तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि एक कुछ मिनट का ध्यान या सुदर्शन क्रिया या डीप मेडिटेशन यदि आप करने लगे, कुछ नहीं, शायद दिन का आधा घंटा, बस इतना इन्वेस्टमेंट है, आप देखोगे कि 23.5 घंटे आपके एक एनर्जी में जाएंगे, एक अच्छी सकारात्मक सोच आती है। फिर आपको ज्यादा गाइडेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपके अंदर से आवाज आती कि मुझे यही करना है। तो ये मार्गदर्शन शायद प्रकृति की देन है जो कि हम पहचान नहीं पाते।
1: अच्छा तर श्रोतेओ आणि मित्रांनो, खरं तर पारुलजी यांच्याशी अजूनही आपण तास, 2 तास अशी चर्चा करत राहू शकतो आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्याला असंच वाटणार आहे की आणखीन काहीतरी राहिलेलं आहे, पण आपल्याला वेळेचं बंधन पाळावं लागेल। पारुलजी खुराना मूळतः दिल्लीच्या आहेत आणि प्रवास करत करत करत ते आता उस्मानपर्यंत पोहोचलेले आहेत, आणि आपल्या सर्वांना ते इतर कोर्स घेऊन अनेक युवकांना प्रेरित करतच होते। आपण आज आपल्या रेडिओ तेरणाच्या माध्यमातून सुद्धा ऐकणाऱ्या अनेक हजारो श्रोत्यांना, लाखो श्रोत्यांना त्यांनी या ठिकाणी प्रेरित केलेला आहे। पारुलजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आई, आपने वक्त निकाला और

राम हिलता इश्क हता एटम वाम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता

0: आली ता सांग तुझा दिस तो कसा
1: पहला राती ता गलार खाप दसा
0: कग डोल्या की बाहुली फिर फिर ते।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे लेकिन, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात, एक बात, लेकिन एक बात।

0: अच्छी है, न जाने क्या बात है उनमें, वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है।
1: और जब मैं देखती हूँ?
0: अरे जब तुम देखती हो तो गजब हो जाता है, होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती है छुट्टी।
1: अच्छा, सिर्फ देखने में इतना असर?
0: अरे सिर्फ देखने से नहीं, प्यार से देखने से। और फिर प्यार चीज ही ऐसी है, अरे लोग तो पागल हो जाते हैं पागल।
1: आप भी होने वाले हैं शायद?
0: हाँ हो जाता अगर तुम मुझसे प्यार न करती।
1: ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ?
0: व्हाट, अभी तक नहीं कहा?
1: जी नहीं।
0: तो फिर फौरन इसी वक्त एडवांस कहो।
1: नहीं,
0: मैं भी कलवा के छोड़ूंगा।
1: कभी नहीं।
0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
1: क्या?
0: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
1: है।
0: गलियों पे निखार है?
1: हाँ है।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है?
1: ना ना।

0: हुजूर ये गीत है या कवाली?
1: प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले।
2: आप लपी है कवाल, भैरवी भी गाएंगे तो आपके मुंह से कवाली लगेगी।
3: आ